0: अब नशा तथा मनोरोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार लाली गुराँस फार्मेसी अस्पताल लाइन बुटवल पुष्पलाल पार्क देखि 20 मिटर पूर्व नेशनल प्याथ ल्याब को ठीक पछाडी। मोबाइल 9806233111 र 9806221354।
1: सौजी क्यूआर भयो ए
2: भगनुस् त मेसेज आएको छैन।

टाटा पेन्ट्स हामी रंगाउँछौ नेपाललाई द ब्ल्याक हर्स बाजेदेखि नातिसम्म 1914 अहिलेसम्म सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जहाँ नेपाली त्यही सिटी एक्सप्रेस पेन जादु ऑयल